माया कठी कीती। सतगुरु कथन करते हैं कि ये जो माया है ये कैसी है, कहते ये ता गऊ दे मास वर्गी है। गरीबां दी माया, ये गरीबां दी माया गऊ दे मास वर्गी है, ते मुसलमाना वास्ते सूर दा मास है। ऐसी ये जो माया है दूजे दा हक पराया नानका, उस सूअर उस गाए गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। सतगुरु कथन करदे कहंदे पाप कर करके माया कठी कर लई, पर जदों हुण अंत समा नेड़े आ रहा, उम्र घटती जा रही है, फिर वो पाप मन विच चितवदे बार बार याद आंदे कि मैं इदां पाप कीता, इदां दुख दित्ते, इदां लोकां नूं तंग कीता, फिर ये जीव पछताउंदा है, पछतांदा पछतांदा, पर इस नूं कुछ प्राप्त नहीं हुंदा। फिर कहंदे महाराज कहंदे हुण ये पछतावा बल्ले रह गया, हुण कोई कारण नहीं रह गया कि अगे की करिए। सतगुरु कहंदे कबू ना साका छांट, हुण छांटा कादा लावे, हुण तां ना सितरी उम्र सी सारी।

हर जन्म मरण विहीन रस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत।

काल हरिया छेद हरिया भेद हरिया जंत्र हरिया मंत्र हरि सो तेज हरिया तंत्र हरि अजात हरिया पात हरिया मित्र हरिया मात हरिया रोग हरिया शोक हरिया भरम हरि।

एक भावना बिहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पटकत जाके कान में खजूरा दस मुंड छटकत पितर पुत्र हूं के शोक सो। आग को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सो। कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षा न सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोक सो। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाय ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महदान बन हुजलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोक न भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत गार कुंचर उगत हा अनेक ता पुकार ही। कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांस बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पे पायत अजाप देव भूत ना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पता।

करता करीम सोई रास करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही के सेव सब ही गुरु देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पय अनेको भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदु न्यार न्यार देशन के भेद को प्रभाव है।

न कर्मं न भ्रमं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं बेखं जोनि स्वरूपं।

नेहं नगे हं सने हं सनाथे उदंडे अमंडे व्रचंडे ब्रह्माथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंकं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग फेखं न सत्रंग न मित्रंग न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनि यच्छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभयनिर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा

बेज के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाज धामे कहूँ अक्षर के वज्र के सिद्ध साधे कहूँ सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूँ अंग के रंग के संग देखे कहूँ जंग के

कहूँ वरम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखति रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाणी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान की गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ वीर विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नाग बाने कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या अभूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजं धीराजाधिकारी

जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याज जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नांग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम वर्षा सहंत कई कल्प एक आसन पितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तत् पावत न पार कई ऊर्ध पाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र चुरंत वेद कई गोग काव कथत कतेव कई अग्न होत कई पवन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नहीं तब देव हो वत्वतच्छ कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धरम कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त बांत भांतन विचार नहीं नायक तास पा यतन पार कई कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अग्न होत्र कई देव

राम कहू हस्त दान कहू अश्वमेध मख को बखान कहू करत ब्रह्म विद्या विचार कहू जोग रीत कहू बिरद चार कहू करत जच गंधर्व गान कहू धूप दीप कहू अर्घ दान कहू पितृ कर्म कहू वेद रीत कहू नृत्य नाच कहू गान गीत कहू करत शास्त्र सिमृत उचार गई भजत एक पग निराधार कई नेह देह गई गेह वास गई ब्रह्मत देश देशन उदास गई जल निवास गई अगन ताप गई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल प्रंग प्रजांत नहीं तदब तास पाय न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदब दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन भो कुटो

भुवं तपतापस सर्व जलेर थलंथन उचरत इंद्र कुमेर बलं अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड अभूत छेद छयंगन काल अपाल दयाल स्वं जेठट्यं वेराकाश भुवं अनखंड अमंड प्रचंड नरंग देह रच्यंग देव देव वरं सबकी नीति न जमीन जमा जे रच्यंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न सुख सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न पात न मात पितं जे रच्यंग छत्री छत्र चितं जे राग न रेख न रोग फणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंड है ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पत आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रोबिंद नगेंद नगं श्रेय जच गंधर्व वणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नर पाल रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत ज्योत भुजंग किए देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय दात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप है किन्नर जच्छ जुअंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जच्छ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जीर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत भूत छूत मतंगन गाद प्याद नाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगं जय शोक न भोग न जुग जुगं भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूपा दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लहै जय वेद पुराण कतीब जप सत सिंध दो मुख ताप तप कई कल्पन लो तप ताप कर नई नय कृपा नित पान पर जय फोकट धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा नित को जप है तेउ या भव सागर को दर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है देव भूल।

भंज भंज जानिया, भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया, अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व साथ है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा, अनूप रूप स्वरूप है छिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए, नराग रंग रूप है न रोग राग रेख है, अधोग ताक दग है अभूत ब्रह्म भेक है, न तात माद जात है न पाद जिहन वर्ण है, अदेग शेख भेक है सदीव विश्ववरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्ववरण है, जिमी जमान के भी है सदीव करम भरम है, अद्वैख है अभेक है अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर मैं विशेक आन मानिए, न जंत्र मै न तंत्र मै न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई, न कर्म मै न धर्म मै न भरम मैं बताइए, अगंज आदि देव है कहो सो कैसे पाइये, जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है, नहान है न बान है समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए, न देह है न के है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है।

है न रंग है न मान है न मौत है न साख है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न चल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेद है न दात है न माध है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सुख है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बली अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिय भूम विज है सदा छिंच तेज मानिय न आद न व्याध है अगाध रूप देखिए दुख है अदाग है छह प्रताप देखिय न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न ब्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि ग्रंथ सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपे विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ विखिय अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए सदैव सर्वलोक।

अपार हस्त कीट बिखे वसे सब ठौर मैं निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमयो जय चक्र चिहन न चित्र।

सन का सन के नंदन पावही ना सेब जाच किन्नर मछ मानस मुर्ग मुर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्र ओम चार सर्व सबद पतार के दर्जा पही जह जाप आद देवा गात तेजा नाथ मुरत ताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहियो विराज धीराज राज प्रवीन जछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैसनंक बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न बध उर्ध न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सपत बतार के तर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस वर्ण नेत पूरण होत सोत सोत हटे सभ सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महाकप कड़त गाड़ अनंत हार हार कहियो सभु मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेब देव दानो मूढ़।

सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वके निजभाम सर्वभुक्ता सर्वजुक्ता सर्वकर्म प्रवीण सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वकर्म अधीन सर्वसिमृतन सर्वशास्त्रन सर्ववेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वहर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवाखंड भूम का जले थले महे जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता

दंडन असुर बिहंडन दोष निगंदन आदृते जछरासुर मारण पति धारण नरक निवारण गूढ़ गते अछे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन रंभक परदन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दोष निगंदन पुष्ट उदंड।

हे सुदसन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय हो से माखा सुर मर्दन आद कुमार गाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन वृष्ट विनाशन अमृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितले जय जय हो से सब ठौर निवासन पाए पताला का सनले संकटी निवारण धम उधारण तेज प्रकरखण तुंद तवे दुह दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी सहस्र प्रकरखण आद नील गाद भे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके याद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन शुंभ चक्रतन शुंभ मथे बारज बिलोचन वितन विमोचन सोच बिसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरणासे

बाजे ब्रह्म भाजे सुन सुरंगो किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुखो बराजे मध उरंग दुर्जन दल दजे मंदन रिजे सब न फजे रोहरण जय जय हो सीम का सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर प्रत्ये धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुन संजय

दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदरखण वितल तले अष्टायद बाहन बोलले बाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद नाद गाद वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायद चमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आद बते डुकडुकी दमंगे बाघ बबंगे भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दुधारण एक भटे पापान बिहंडन दुर्ज प्रचंडन खंडे

रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्धन बिड़ाल बंदे सरदार अभिवर खण दुर्जन धर खण दुल नमर खण धरम दुजे धूमराज विधुम संसुणत चुन संसुंभ न पात ने सोम्भ मथे जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद नील गाद कथे।

नानक अमल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जलधर प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धरम जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल पार। जारी न जाय जय रूप रेख है बास दास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल। ऊर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंछिज तेज अनभिज अताग। जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निषिद नुचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख तहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जय नेत नेत निषिद नुचरंत।

संतु बार गनी मन गारे पच पशु नग नाग नराधव सर्व समय सबको प्रतपाल है। पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे धीर दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहार है। दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड खंड प्रचंड पहारण पूरण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पदमापत भेद गते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोग रोहान की रोजे नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हम एव ना भेव लख्यो ब्रह्म शिव फरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पदमा पत पाए। आद अनंत अगाद तवे सो भूत भवेख भवान अभय है अंत विहीन अनात्मा दाग दोगा छिद्र छह है। लोगन के करता हरता जन मैं थर मैं वर्ता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापते है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छय है। जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुम्हरे सुत सुंदर श्रीपद मापत ले है। रोकंते अरसोकंते जल जोकंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपन कर दे कर पाप संभूह न भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सौ सो बेट ही के पड़ बीज बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा काश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभा हो को नीत ही नीत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद कतेव न वेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाथ सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मल मै जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान भेद निर्पान सब बजहारे वेद न पाए सक्यो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद नाद गाद बेगत वेग जप्यो तिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश विरयो कर भेस्त बोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कूट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया वसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ताके दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्याव गोर कर तेजी गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फराके फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पछम के पछमी पछाने निज काम है। मरटा मंगे दे तेरी मान सो तपस्या करे देड़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले माग देश के मुकेले वीर बंग सी बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस न्याव तिब्बत ध्याय दुख देह के तलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहे चिट्ठी की निंगार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है। कहते ससरासी कहते सूरज प्रकाशी कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कहते महादीन कहते ब्यास से प्रवीण कहते कुमेर कुलीन कहते जच कहियत है। करते है विचार पूर्ण को पावे पार ताहि ते अपार निराधार लहियत है।
पूरन अवतार निराधार है न पार वार पाई है न पार व्यापार के बखानी है अद्वय विनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ कर राशि है अनासी के मानी है जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा के सो छटा के अन मानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है तेज हूँ कतर है राजसी कुसार है शुद्धता को घर है सिद्धता की सार है कामना की खान है साधना की शान है विरक्तता की बान है बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है भूपन को भूप है रूप हूँ रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दास है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को उपहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनी मन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के सत्रण के साल है के मित्रण को भोगत है के वृद्धता की बासी है जो को हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है निके पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजान को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरण है कया पता को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पारा वार हूं को पार जगो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह बसी है लपित है वह पूर्वी न पार पावे असत्य नाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाथ वह अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रोम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाद के छी सत्रा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिहारो महिरा सिंह सेना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपा सी चंदेरी गुड़ चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हलबा ने रहस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बुलंदवाद कीरत तिहारी की ओजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है भकरी गंधारी गोर कखरी गुरदे जचारी बावन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं बिराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र तेता विनाथ की

फिर बादशाह बहादुर शाह ने अपने दूतां नूं भेज करके सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं अपने पास बुलाया है, सद्दा भेजिया है। सतगुरु पातशाह जी अपने घोड़े दे उत्ते सवार हो करके जिथे बादशाह बहादुर शाह दा तंबू लगा सी उस पासे नूं चल पए हन। सतगुरु पातशाह जी बहादुर शाह दे कोल पहुंचे। बहादुर शाह ने बड़ी निम्रता दे नाल सतगुरु जी नूं नमस्कार कीते। सतगुरु जी नूं बड़े सन्मान दे नाल आदर दे नाल अपने पास बिठाया है। हाथ जोड़ करके सतगुरु सच्चे पातशाह

0: आप जी का सवाल पूरा कर देवांगा। आप जी कृपा करो, एक साल वास्ते आप जी महाराज रुकना करो।
1: बनो ना बेमुख संगत हारे।
0: महाराज जी मैं आप जी तो बेमुख नहीं हां, मैं आप जी दे नाल प्रेम नाल महाराज आप जी तो डर के आप जी दी भै भावनी विच रवांगा।
1: मैं जानो नी के उपकारे।
0: मैं आप जी दे उपकारा नू जानदा हां, जो आप जी ने मेरे उत्ते उपकार कीता, मेनू हिंदुस्तान दे राज भाग बख्शे हन।
1: सुन श्री मुख साहिब फरमायो।
0: सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज पै काहू को देत नह पै मानत आन। हिंदुस्तान दा बादशाह सी बहादुर शाह, सतगुरु जी नू वादा कीता दे वादे तो मुकर रहा सी। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उस समय निरपै हो करके इस तरह वचन कीता।
1: अब ते पाज कहन मन पायो।
0: हे बादशाह बहादुर शाह, जेड़ा तू वादा कीता सी तू उस तो मुकर रहा, तू हुण झूठ बोल रहा, तेरा पाज जेड़ा झूठ है ओ सामने आ रहा है।
1: इसी हेत हम लिखत कराई।
0: इसे करके ही सानू पता सी तुसी मुकर जाना, इस करके असी तेरे तो राज देण तो पहला तेरे तो लिखत कराई सी। लिखत विच लिया सी कि साडे ए जो इकरार है पूरा करेगा। हुण तू अपने इकरार तो बदल रहा है, पलट रहा है।
1: संतन पाए सो नट कर जाई।
0: सानू पहला ही पता सी कि तू इनू राज मिल गया तू बदल जाएगा, इस करके असी तेरे तो पक्की लिखत करवाई सी।
1: फरेब लिखे पर की ना।
0: पर फिर भी तुसी फरेब करते हो, झूठ बोलते हो, अपनी गल्ला तो पैर पिछे करते हो। इस करके असी तेनू जेड़ा जेड़ा तू साडे नाल इकरार कीता सी उथो तू पिछे पलट रहा है। तेनू असी एक सवाल पाया सी, असी तेनू इन्ना वड्डा राज भाग पूरे हिंदुस्तान देश दा दित्ता सी, पर तू एक इकरार नहीं पूरा कीता, एक इकरार तो पिछे मुकर रहा है। असी ता तुरकां दीआं जड़ां उखाड़ दित्तियां सी इस देश विचों। असी तां जिस समय सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने राय कल्ले दे पास महाराज बैठे सन, सतगुरां ने घाही दा बूटा पुट के आख्या सी तुरक राज की जड़ां उखाड़ी। असी तुरकां दे राज दीआं जड़ां उखाड़ दित्तियां। सतगुरु कहिंदे असी तां तुरकां दा राज पहलां ही खत्म कर चुके सी। तू साडे कोल आया दीन होके, गरीब बन के साडी शरण विच आया, शरण विच आया दी गुरु घर लाजपत रखदा। जो शरण आवै तिस कंठ लगावै, ए बिरद स्वामी संदा। जेड़ा गुरु दी शरण विच आउंदा उसनू गुरु अपनी छाती नाल लाउंदा। इस तरह तू साडी शरण विच आया सी, इस करके असी तेनू राज दे दित्ता सी। पर तू फिर भी विश्वास घाती निकलिया है, तू अपने कीते हुए इकरार तो कीते हुए पूरे सवाल तो तू मुकर गया है।
1: दियो ना दैबे कहयो जरूरा।
0: असी तेनू जो तेरे नाल इकरार कीता असी अपना इकरार पूरा कीता, पर तू जो इकरार साडे नाल कीता, जो साडे नाल तेरी गलबात होई सी, लिखत गलबात होई सी, तू ओथो मुकर गया, हुण झूठ बद बोल रहा है। ए तां बड़ियाई देनी सी असी तेनू कि जिन्हां पापियां ने इस संसार उते गऊ गरीब दे नाल पाप कमाया, इस देश दे हजारां लोकां दे धर्म बदले, इस देश दे हजारां मंदरां नू तोड़िया, इस देश दी जो मर्यादा सी उसनू खत्म कीता, असी तां उन्हां नू पकड़ा के तेरे कोलों फड़वाणा सी, उन्हां नू सजावां देणियां सी। इहदा तेनू असी बादशाही दे रहे सी, तेनू वड्याई दे रहे सी, पर तू वड्याई लैण दे काबल नहीं है। असी ये चंगा काम तेरे कोलों करवाना चाहते सी कि बादशाह औरंगजेब ने तां पाप कीते, उहदे पुत्तर ने चंगे काम कीते, ऐसा असी संसार नू दसना चाहते सी,
1: ਤੋ ਭਾਗ ਵਿਖੈ ਇਹ ਨਾਹੀ,
0: ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ।
1: ਸਮਝ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਸਹੀ,
0: ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ।
1: ਐਸੋ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾ,
0: ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ।
1: ਜਗ ਮਹ ਦੇ ਕਰ ਤੇਜ ਵਧਾਵਾ,
0: ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੋਰਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ।
1: ਜਹ ਦੋਖੀ ਕੂਰ ਕੁਚਾਲੇ,
0: ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਮਾੜੀ ਕੁਚਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹਨ,
1: ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਬਲ ਨਾਲੇ,
0: ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏਗਾ।
1: ਜੋ ਸੂਬੇ ਮੁਲਾਂ ਬਹੁ ਤੇਰੇ,
0: ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੈ,
1: ਸੰਘਾਰਨ ਸਭ ਇੱਕ ਵੇਰੇ,
0: ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
1: ਸਲਤਨਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵਾ,
0: ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
1: ਲਸ਼ਕਰ ਠਹਿਰਨ ਕੋ ਪਾਵਾ,
0: ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ।
1: ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਓ,
0: ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ

0: खालसे दे उत्ते जित प्राप्त कर लवेगा। खालसा साडा हर पासे जित प्राप्त करेगा।
1: उजड़ा देश न राखा कोई,
0: तेरा देश उजड़ जावेगा, ओदा कोई राखा नहीं होएगा।
1: अब ऐसी गत निश्चा होए,
0: हुण ऐसी गत होवेगी, ऐसे इस देश दे हालात होणगे, जिस धरती दे उत्ते पाप होया उस देश उत्ते पापियां दा नाश होवेगा।
1: साहिबजादे जिन संघारे,
0: जिन्हां पापियां ने साडे साहिबजादियां नूं शहीद कीता, साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चिणिया है, जिन्हां पापियां ने एक एक दोषी नूं एक एक पापी नूं साडा खालसा जिहड़ा उहनां नूं फड़ के सजावां देवेगा। इस तरह असीं पूरे देश विचों जिन्हां जिन्हां ने गुरु घर दे नाल पाप कमाया, जिन्हां दोखियां ने गऊ गरीब दे नाल वैर कमाया, उहनां दा असीं नाश करांगे।
1: देखो नहीं सफला है
0: बादशाह, ए सारा नाश हुंदा तू अपनी अखां दे नाल वेखेगा, तेरे सामने होवेगा, पर तेरा कोई वस कोई जोर नहीं चलेगा। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वीर रस विच आके जदों इस तरह बचने आखे,
1: उठे आए निज है पर चरे।
0: सतगुरु महाराज जी बचन करके आ उठ के घोड़े दे उत्ते सवार

0: कुछ दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आगरे विच बतीत कीते हन। बादशाह बहादुर शाह सतगुरां दे बचन सुन ले बड़ा दुखी होंदा बड़ी चिंता करता है पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अगे केदी मजाल केदा चोर जिहड़ा सतगुरां नूं बचन कर जावे। सतगुरु सच्चे पातशाह बब्बर शेर दशमेश दा खौफ मारे कोई अख उठा भी सकिया ना। ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे अगे बादशाह दा कोई जोर नहीं चलिया चुप कर गया बड़ी चिंता दे विच पै गया।
1: कहां मौन मुख तारी
0: उसने जान लिया कि हुण सफलता नहीं होनी की जानिए की होवेगा हुण कैसे बचन सतगुरु जी ने कर दिते हन ते चुप कर गया। सतगुरु जी दे पासों हुण बड़ी चिंता धारण करता है
1: के साथ उचारी
0: ते अपने मंत्रियां नूं सारी गल बात

0: राजस्थान दे उते चढ़ाई करना जमना ते जेड़े राजपूत राजे हन उना दे उते मैं आपना राज जेड़ा वो सल्तनत उना दे उते भी चंगे तरीके नाल कायम करना चाहुंदा हां।
1: उदयपुर जोरण गाढे
0: उदयपुर वर्गे जोधपुर वर्गे जयपुर वर्गे जेड़े वड्डे वड्डे किले हन किस तरीके नाल मेरे नाल संधि कर लैण मेरे नाल आके रल जाण ते उन्हां दा डर ते साडा भी जेड़ा

0: जोड़े पांच पांच उंगल जोड़े खपरे तीर बिछुए खंजरा पेच कबज अनेक प्रकार दे शस्त्र उथे सजाए हन। तुपक बड़िया बड़िया पिस्टोल रिवालवर अनेक तरह दे शस्त्र बंदूका उथे सजाइया हन। सतगुरु सचे पातशाह जी दे शस्त्रां दा खजाना जेदे विच बड़े बड़े चंगे कमान नोटंके कमान बड़े बड़े तीर कमान बड़े बड़े शस्त्र सैफा तेगा सतगुरु सचे पातशाह जी दे खजाने विचों सिखा ने कढ के सिंघा ने बड़ी सफाई करके शस्त्रां दी पूजा करदे धूप दीप भेटा करदे उना दे उते चंदन दे टिक्के लाउंदे हन।
1: सकल प्रेम कर उर को
0: बड़े प्रेम नाल कोई दिखावा नहीं करदे दिलों प्रेम नाल शस्त्रां दी पूजा करदे हन।
1: जिन अनेक प्रकार कराए
0: ते शस्त्र जनों लंगर वरतदा फिर सेवा करन तो बाद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहु संतोह जी

सचे तेरे करण सर्व विचार सच्चा तेरा मैं सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुकुम सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदाखे लख करोड़ सच्चे सप्ताह।

थोड़ी नजर करे जा पिता नदरी सदगुरु पायो हो जी बोते जन भरमी आता सदगुरु सब सुनाया सदगुरु जेवड़ दाता को ने सब सुनियो लोक सभा सदगुरु ने सब पाया जिन्हें चो आप गवाया जिन्हें सचो सच बुझाया जिन्हें सचो

पौड़ी फिर शुरू करन पायो, फिर शुरू करन पाया। सतगुरु विच आप रखियो नकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलदा मुक्त जिन चो मोह चुकाया, उत्तम विचार जिन सच्चे स्यों चित लाया।

हमच नर स्वर्ग अवतार हमच हसा हमच रोब हमच पर हमच तोब हम जात जिस खोब हम मूर्ख सियाड़ा मुख मुति सार न जाना हमच माया हम छाया हमें कर कर जंतु पाया हमें बुझे।

सुमत दान नानका सरा मेरा जनता नानक तू पाए के संभाले सबना दिन करते करना किया चिंता पे करने ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस ज्वारी स्वास तिस तिस दी बाण अपग नानक सच्चे नाम।

जुग जुग भैरव डाये ज्ञानी बुझता है। सतगुरु संतो का धर्म गैरतवा उतरत जते का जोर गैरतवा द्वापर तपे का सत गैरतवा कल

0: तन फिटे फेड़ करेन मन झूठी चुली भरेन
1: मत पिटे बे मत पिटे एहो अनसाडा पिटे तन फिटे फेड़ करेन मन झूठे।

चित्ते अंदर सबको विघ्नदरी हेठ चलाएंदा पेदी बडियां आपे ही कृप कराएंदा उडुडा और मेदरी सिरे सिर तंजे लाएंदा नजरू पुट्टी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा धर्मंगण पेकना पाएंदा।